इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

साधो सहज मिलेगा सोय। श्रोताओं, कबीर साहब साधक का पहला कदम बताते हुए कहते हैं, चिंता चित्त निवारिए। सबसे पहले अपने चित्त यानी अपने अंतर मन से इस चिंता रूपी दीमक को, इस मानसिक व्यग्रता को पूरी तरह निवारिए, यानी बाहर निकाल फेंकिए। फिर ही बुझे ना कोई, जब चित्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है तब संसार के किसी भी झूठे प्रपंच, संशय या मत मतांतरों को बूझने यानी उनमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह चिंता मिटेगी कैसे? अगली पंक्ति में कबीर इसका गहरा व्यवहारिक उपाय बताते हैं। इंद्री पसर मिटाइए। इंद्री पसर का अर्थ है हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का बाहर संसार के विषयों, भोगों और लालसाओं की तरफ लगातार भागना और फैलना। कबीर कहते हैं कि सजगता के साथ इस इंद्रियों के फैलाव को समेट लो, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोक लो। सहज ही मिलेगा सोई, जैसे ही इंद्रियों का यह भटकाव मिटेगा और चित्त शांत होगा, वह सोई यानी वह परम पुरुष, वह निराकार परमात्मा तुम्हारे सहजी यानी बिना किसी कठिन प्रयास के बिल्कुल सहज रूप में तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा। अगर इसे हम स्पष्ट रूप से समझे या दार्शनिक दृष्टि से समझे तो यह दोहा अष्टांग योग के प्रत्याहार और सहज समाधि का अनूठा संगम है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जब तक संसार की चिंताएं और वासनाएं सक्रिय हैं तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। चिंता असल में भविष्य का भय है और अतीत का पश्चाताप है, जो मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी कठिन शारीरिक हठयोग या पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमारी इंद्रियों का पसर यानी फैलाव बाहर की तरफ है। जैसे ही यह ऊर्जा अंतर्मुखी होती है वैसे ही बुद्धि शांत होती है और आत्मा अपने मूल रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यही सहजता की पराकाष्ठा है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद को देखिए कि हम सुबह से शाम तक किन किन बातों की चिंता में घुले जा रहे हैं। क्या उन चिंताओं से कभी कोई समस्या हल हुई है? हमारी आंखें, हमारा कान, हमारे कान और हमारा मन किसी कदर संसार के प्रपंचों और पर निंदा में फैले हुए हैं। आज कोशिश कीजिए इस इंद्रिय पसर को समेटने की। जब भी मन किसी चिंता के जाल में फंसने लगे तो अपनी चेतना को वापस खींचिए और गहरे विश्राम में उतर जाइए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे से बचाकर उस राम नाम के सुमिरन में लगाइए जो पूरी तरह सहज और सरल है। याद रखिए, जब भीतर की हलचल थमेगी तो वह परमात्मा सहज ही आपकी चेतना में मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए

0: रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज एट टचिंग।
1: हाय मी आरजे स्वरा, आपण ट्यून केले रेडियो मन भवन 90.8 FM ऑलवेज हार्ट टचिंग।
2: सबने बदे राहें कठिन, लेकिन हाँ

0: वहाँ से मेरी थॉट की जो पूरी प्रोसीजर है वो चल
1: खुश होंगे. सो एवरीथिंग वाज बीइंग डन फॉर हैप्पीनेस व्हिच वाज ओके फॉर सम टाइम. इट सीम्ड टू बी गोइंग

इतिहास के सफों पे दर्ज हैं कहानियां कई देशों के संघर्ष के दौर की, वो दौर जब जन्म लिया था इन देशों के राष्ट्रगीतों ने। ये राष्ट्रगीत कभी किसी राष्ट्रनायक के इर्द गिर्द लिखे गए तो कभी किसी देश के ध्वज के संदर्भ में, कहीं ये विशुद्ध प्रार्थना बने तो कभी गाए गए लोकगीत के रूप में, कहीं ये कामना है महारानी की दीर्घायु की तो कहीं है वंदना मातृभूमि की।

साधो सहज मिलेगा सोई। श्रोताओं, कबीर साहब साधक का पहला कदम बताते हुए कहते हैं, चिंता चित्त निवारिए। सबसे पहले अपने चित्त यानी अपने अंतर मन से इस चिंता रूपी दीमक को, इस मानसिक व्यग्रता को पूरी तरह निवारिए, यानी बाहर निकाल फेंकिए। फिर ही बुझे ना कोई, जब चित्त चिंताओं से मुक्त हो जाता है तब संसार के किसी भी झूठे प्रपंच, संशय या मत मतांतरों को बूझने यानी उनमें उलझने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती। मन सारे द्वंद्वों से ऊपर उठ जाता है। लेकिन यह चिंता मिटेगी कैसे? अगली पंक्ति में कबीर इसका गहरा व्यवहारिक उपाय बताते हैं। इंद्री पसर मिटाइए। इंद्री पसर का अर्थ है हमारी ज्ञानेंद्रियों और कर्मेंद्रियों का बाहर संसार के विषयों, भोगों और लालसाओं की तरफ लगातार भागना और फैलना। कबीर कहते हैं कि सजगता के साथ इस इंद्रियों के फैलाव को समेट लो, अपनी ऊर्जा को बाहर बिखरने से रोक लो। सहजी मिलेगा सोई। जैसे ही इंद्रियों का यह भटकाव मिटेगा और चित्त शांत होगा, वह सोई यानी वह परम पुरुष, वह निराकार परमात्मा तुम्हारे सहजी यानी बिना किसी कठिन प्रयास के बिल्कुल सहज रूप में तुम्हारे भीतर ही मिल जाएगा। अगर इसे हम स्पष्ट रूप से समझे या दार्शनिक दृष्टि से समझे तो यह दोहा अष्टांग योग के प्रत्याहार और सहज समाधि का अनूठा संगम है। उपनिषदों में भी कहा गया है कि जब तक संसार की चिंताएं और वासनाएं सक्रिय हैं तब तक आत्मज्ञान संभव नहीं है। चिंता असल में भविष्य का भय है और अतीत का पश्चाताप है, जो मनुष्य को वर्तमान क्षण में जीने नहीं देती। कबीर यहाँ समझा रहे हैं कि परमात्मा को पाने के लिए किसी कठिन शारीरिक हठयोग या पहाड़ों पर जाने की आवश्यकता नहीं है। परमात्मा तो पहले से ही हमारे भीतर मौजूद है, बस हमारी इंद्रियों का पसर यानी फैलाव बाहर की तरफ है। जैसे ही यह ऊर्जा अंतर्मुखी होती है वैसे ही बुद्धि शांत होती है और आत्मा अपने मूल रूप में प्रतिष्ठित हो जाती है। यही सहजता की पराकाष्ठा है। आज का चिंतन, मेरे दोस्तों, आज जरा खुद को देखिए कि हम सुबह से शाम तक किन किन बातों की चिंता में घुले जा रहे हैं। क्या उन चिंताओं से कभी कोई समस्या हल हुई है? हमारी आंखें, हमारे कान और हमारा मन किसी कदर संसार के प्रपंचों और पर निंदा में फैले हुए हैं। आज कोशिश कीजिए इस इंद्रिय पसर को समेटने की। जब भी मन किसी चिंता के जाल में फंसने लगे तो अपनी चेतना को वापस खींचिए और गहरे विश्राम में उतर जाइए। अपनी ऊर्जा को व्यर्थ के दिखावे से बचाकर उस राम नाम के सुमिरन में लगाइए जो पूरी तरह सहज और सरल है। याद रखिए, जब भीतर की हलचल थमेगी तो वह परमात्मा सहज ही आपकी चेतना में मुस्कुराता हुआ मिल जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात कबीर के एक नए सूत्र के साथ। सुनते रहिए मनोज के साथ सुनो भाई साधो 90.8 FM रेडियो मन भावन पर। तब तक के लिए राम।